0: sedang mendengar Sandakan FM bersama Mo. Namaste Bollywood, Sandakan FM.
1: और मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? मैं अपना प्यार एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती।
2: हाँ, तेरा फीलिंग का तो स्टीडी बा। अत बंजक लग लग बोली।

0: Bollywood. प्यार प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल।
1: इसी में वह हुजूर मिंगू डी सनकन एफएम डिगर रचांगा नमस्ते बॉलीवुड पास्टिया मुझे हाजिर इस्तीमेवा खबर पेमिनट बॉलीवुड सामील बरसांताई डी हुजूर मिंगू दिनारका नमस्ते बॉलीवुड सेटिया हरी आहार पुकल 12:30 तिंगा हरी हिंगा 1 तिंगा हरी नमस्ते बॉलीवुड डी सनकन एफएम बरसामामु
2: कुछ होता